0: online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
1: Sure, everyone. I'm John Thornley, presenter of the Wesley Broadway Show, Judge News, talking with guests, and a variety of music, especially songs by New Zealanders and popular music that expresses a spirituality for Aotearoa New Zealand.
0: The Wesley Methodist Half Hour on Manawatu People's Radio, Tuesdays and Saturdays at 11 a.m.
2: I'm Ayana Young, host, founder, and executive director of For the Wild. For the Wild focuses on land-based protection, co-liberation, and intersectional storytelling. We join some of the brightest thought leaders and visionaries of our time to uplift a multitude of perspectives, amplify grassroots voices, and tell stories that would otherwise disappear in mainstream media.
0: For the Wild on Manawatu People's Radio, Thursdays at 3 p.m.
2: Or find us online at www.forthewild.world.
3: Health Check from the BBC.
4: What is the idea behind it?
3: Discussing innovations in healthcare.
5: Can we live forever?
3: New discoveries.
4: Could losing weight be the key to fertility for some men?
3: And the latest medical research.
6: How many bacteria can be spread simply from shaking hands?
4: Are you the same person when you're 18 or 30 or 70?
7: That's an interesting question.
4: Now, I want to ask you about something completely different.
3: Health Check from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on MPR.
8: Namaste, main hoon Nirmala Nand aur aapka swagat karti hoon apne show Parichay mein. Parichay ka lakshya yahi hai ki hum aapka parichay un khas logon se karayein jo Fiji ya Bharat se aakar New Zealand mein base hue hain aur bahut safalta ya kamyabi hasil kiye hue hain. Iske saath saath hum kuch dilchasp vishayon par bhi baatcheet karenge aur show ko lajawab गीत संगीत से भी सजाएंगे।
9: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और आपका स्वागत करता हूं आज एक बार फिर से आपके अपने शो में जिसका नाम है परिचय। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली बार हमारे पास बहुत ही खास गेस्ट मौजूद थे, लेकिन बात ये हुई कि हमने इतनी बातें करी कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो हमने आपको वादा किया था कि हम उन गेस्ट को एक बार फिर से यहाँ पे बुलाएंगे, तो हम अपना वादा निभा रहे हैं और हम स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से जसवीर कौर जी का। जसवीर जी, स्वागत है आपका।
10: नमस्ते मैक्स जी, शुक्रिया मुझे दोबारा शो पे बुलाने के लिए। कई श्रोता पहली बार ये शो सुन रहे होंगे, तो मैं अपना परिचय दोबारा देना चाहूंगी।
9: जी बिल्कुल।
10: मेरा नाम जसवीर कौर है, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस चलाती हूँ पामेस्टन नॉर्थ में।
9: जी।
10: प्रैक्टिस का नाम है हार्मनी होम्योपैथी। इसके पीछे मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है।
9: जी।
10: न्यूजीलैंड में मैं 2017 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके पहले 5 साल मैंने इंडिया में प्रैक्टिस करी और पढ़ाई के दौरान भी मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ केसेस देखती थी, तो 5 साल वो भी जोड़ लेती हूँ।
9: जी, बहुत अच्छी बात है। और जो श्रोता मिस कर चुके हैं पिछला शो, मैं उनको बोलूंगा कि आप अभी भी पिछला शो जाके सुन सकते हैं। तो आपको एमपीआर की वेबसाइट पे जाके वो शो सुनना है और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपको होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और उन चीज़ों के बारे में हम आज और भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र और पहला सवाल आपसे पूछेंगे। कभी कभी मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे लगता है कि वो जो टीवी पे नहीं आते, जैसे कटखरे में अदालत में खड़ा करके वो रजत जी,
10: हाँ,
9: तो उनकी फीलिंग आती है। चलो, अच्छी बात है, फीलिंग ले लेनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप होम्योपैथ हैं, तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है?
10: एज ए होम्योपैथ, सबसे पहले मेरा लक्ष्य होता है समस्या को नहीं, व्यक्ति को ठीक करो।
9: क्या बात है,
10: ठीक है जी। दूसरा, एज एन इंसान, ह्यूमन बीइंग, उस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे पहलुओं से मैं हैंडल कर सकती हूँ। एज ए होम्योपैथ, एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बुखार हो गया, नजला हो गया, दस्त हो गए, जुकाम हो गया। फिर क्रोनिक कंडीशंस आती हैं जो 3 महीने से पुरानी हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, हॉर्मोन्स प्रॉब्लम हो गए, फर्टिलिटी इश्यूज हो गए, रेस्पिरेटरी हो गया, एलर्जीज हो गया, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिंस बनी हुई हैं। फिर जो एक बहुत बड़ा पहलू मेरे नॉलेज में आता है या मेरी प्रैक्टिस में मुझे रोज देखने के लिए मिलता है कि हमारी भारतीयों की डाइट

0: बहुत पुअर है, खाने के नाम पे हम सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं
1: जी,
0: उसमें से कितना हमें आयरन मिलता है, नहीं मिलता है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने से भी आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, ये भी मेरा एक लक्ष्य है। उसके लिए मैंने एक पढ़ाई की, सर्टिफिकेशन की, न्यूट्रिशन की, डाइट एंड न्यूट्रिशन की, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करके अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट देती हूँ। फिर जब कभी आप डाइट नहीं ले सकते हैं तो मैं सप्लीमेंट्स रेकमेंड करती हूँ, तो ये भी मेरा एक लक्ष्य मान लो। बट मेरा लक्ष्य होता है कि भी होलिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इंसान को ठीक करना है, ना कि सिर्फ उसके लक्षणों को ठीक करना है। तो चलो हमने दवाई भी दे दी, हमने डाइट भी सजेस्ट कर दी, चलो हमने सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर दिए, फिर बात आती है लाइफस्टाइल पे। आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए फिर मैं बोलूँगी आप 40 मिनट्स वॉक करिए, ये भी तो एक तरह की दवाई हुई, ये दवाई की तरह ही काम करती है। जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन बनता है, जो आपकी मेंटल वेलनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
1: जी।
0: तो कुल मिला के मैं एक पैकेज देती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि हर तरफ से वो बेटर फील करें।
1: बहुत बड़ी बात है, क्या बात है।
0: और इस लक्ष्य का एक पार्ट और भी है कि मैं जैसे पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो सारी कम्युनिटीज को बराबर मिलनी चाहिए। पंजाबी कम्युनिटी के लिए मैं गुरुद्वारा साहिब में कैंप्स लगाती हूँ
1: जी।
0: अभी तक मैंने वेलिंगटन, हैमिल्टन, पामिस्टन नॉर्थ, नेपियर, मास्टरटन लगाए हैं। आने वाले महीनों में बोल लो, साल में बोल लो, मेरी कोशिश होगी मैं हिंदू टेंपल्स, जैसे कि अभी एक वेलिंगटन में बना है, बहुत बड़ा है, वहां पे लगाऊं। वहां पे गुजराती कम्युनिटी आती है, मराइज में लगाऊं, माओरी कम्युनिटी के लिए लगाऊं। इनफैक्ट जितनी भी कम्युनिटीज न्यूजीलैंड में हैं, मैं उनको सबको इंक्लूड करूं ताकि मेरी सर्विसेज सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हों एंड दे कैन बेनिफिट फ्रॉम होम्योपैथी।
1: बहुत बड़ी बात आपने की है, और ये बात सभी लोगों को एक बराबर तौर पे रखती है जो आपकी होम्योपैथी है।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
1: सब
0: जी।
1: बराबर है आपके लिए।
0: बिल्कुल जी, भगवान ने इंसान को बनाया है, बराबर बनाया है, उसने कभी कोई फर्क नहीं किया, तो मेरी सर्विसेज क्यों करेंगी फर्क।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और काफी हम देख रहे हैं दुनिया में इस टाइम सिचुएशन ऐसी चल रही है, कहीं वॉर चल रही है, कहीं कुछ चल रही है, लेकिन एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर के लिए सब कुछ एक बराबर है।
0: हाँ जी, इस बात पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी
1: जी।
0: इंडिया में मैं डॉक्टर हूँ, इंडिया में मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ
1: जी,
0: पर यहाँ पे मैं सिर्फ होम्योपैथ हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे क्लाइंट्स मेरा नाम डॉक्टर जसवीर कौर के नाम से सेव कर लेते हैं। हाँ जी, मैं करेक्ट करती हूँ एक दो बार, पर उनको आदत पड़ी है क्योंकि वो इंडिया से हैं, वो फिर भी डॉक्टर जसवीर ही
1: बिल्कुल
0: रखते हैं। हाँ, पर मैंने कभी भी अपने आप को एज अ डॉक्टर एडवर्टाइज नहीं किया। कभी मेरी वेबसाइट आप चेक कर लो, www.harmonyhomeopathy.co.nz, या मेरा फेसबुक चेक कर लो, हार्मनी होम्योपैथी बाय जसवीर कौर, सेम पेज इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, कहीं पे भी डॉक्टर वर्ड नहीं यूज किया गया है। इनफैक्ट मैं रोज एक पोस्ट करती हूँ, एक पोस्ट शेयर करती हूँ, और उसमें डिस्क्लेमर लगाती हूँ कि होम्योपैथ इज नॉट अ मेडिकली रजिस्टर्ड डॉक्टर इन न्यूजीलैंड
1: जी।
0: जस्ट एंड इट इज, ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट ही है कि मेरी ड्यूटीज हैं एज अ होम्योपैथ ही रहे, ताकि मैं लीगली अपने आप को सेफ रख सकूं
1: जी। तो अभी आपने बात बात में बताया कि आप फेसबुक पे भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप टिकटॉक पे भी हैं, तो मैं सभी दर्शकों को ये दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज जाके फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आप लोगों को रोज एक कुछ अपडेट मिले, कभी सीखने को मिलेगा, कुछ नया नई बात पता लगेगी, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, तो प्लीज जाके फॉलो कीजिए, बहुत फायदेमंद चीज है ये। और अभी आपने थोड़ा सा एक पॉइंट पे टच बेस किया, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, चैलेंजेस। आपने बोला कि जैसे कि आप न्यूजीलैंड में आप डॉक्टर यूज नहीं कर सकते, तो इसके साथ साथ ये तो एक ट्रेलर है, आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे अपनी लाइफ में एज अ डॉक्टर या एज अ होम्योपैथ, एज अ वुमेन, तो आप कुछ उन चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहेंगे?
0: हाँ जी, सबसे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मैं डॉक्टर टाइटल नहीं यूज कर सकती हूँ, इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं। इंडिया में होम्योपैथी का लेवल या इम्पोर्टेंस अलग है यहाँ से, उसके

0: रीजन है, इंडिया में होम्योपैथी कुछ होम्योपैथी गवर्नमेंट फंडेड है
1: जी.
0: वहां पे इंडिया में आपको सैकड़ों गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज मिलेंगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये फंडेड नहीं है. जो क्लाइंट मेरे पास आता है वो अपनी जेब से पे करके आता है, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते. तो ये एक चैलेंज है
1: जी.
0: एक प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए. दूसरी बात, एक एक यहाँ पे बॉडी है ASA करके, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. यहाँ पे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बहुत डिफरेंट है इंडिया के, भारत के कंपैरेटिवली. वहाँ पे मैं बीमारियों के नाम लिख के ये क्लेम कर सकती हूँ कि हाँ मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं
1: जी,
0: तो मुझे वर्डिंग्स को लेके भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है
1: जी.
0: मुझे ये एक लिमिटेशन लगती है, क्योंकि जब तक मैं अपना मैसेज ही प्रॉपरली नहीं दे पाऊंगी उसका रिजल्ट कैसे मुझे पता लगेगा
1: जी.
0: तो ये मुझे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन लगती है. तीसरी बात जो है, यहाँ पे क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है
1: जी.
0: मेरे क्लाइंट्स हैं जो 50% इंडियन है, 50% कीवीज हैं
1: जी.
0: तो 100% कीवीज क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है
1: जी.
0: ठीक है जी. चौथी बात, यहाँ पे जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, यहाँ पे सिर्फ 4 डिस्पेंसरीज हैं. पूरे न्यूजीलैंड में 4 डिस्पेंसरीज हैं. सिमिलिमम है जो वेलिंगटन में है, नेचुरो फार्म है वो रोटोरुआ में है, सिलीन है वो टोरंगा में है, और ऑकलैंड में है लिंकन मॉल फार्मेसी. आज की डेट में होम्योपैथी में 8,000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, पर यहाँ पे वो सारी की सारी अवेलेबल नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, एक्सपेंसिव बहुत है, महंगी बहुत है यहाँ पे मेडिसिंस. तीसरी बात, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि मदर टिंक्चर्स एक कैटेगरी होती है, वो न्यूजीलैंड में मिलती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मेडसेफ की गाइडलाइंस ही ऐसी बनी हुई हैं. उन मदर टिंक्चर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर क्योंकि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है तो ये भी अफेक्ट करता है इस चीज को. अगला पॉइंट क्या है? ठीक है जी, मैं मेडिसिन देती हूँ, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, पर यहाँ पे जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं वो तो मेंटेनिंग रह रहे हैं. अगर इमिग्रेंट हैं तो उनको वीजा इश्यूज रहते हैं, या उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, उनको बच्चों का स्ट्रेस रहता है, तो लाइफ यहाँ पे ईजी नहीं है
1: जी.
0: मैं मेडिसिन देती हूँ वो ठीक होते हैं, पर मेंटेनिंग ट्रिगर्स या मेंटेनिंग स्ट्रेसर्स की वजह से वो फिर से फ्लेयर अप कर जाते हैं. तो मुझे ये भी एक लिमिटेशन लगती है. यहाँ पे रिलैप्सेस ज़्यादा आते हैं इंडिया के कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे उतने ट्रिगर्स नहीं हैं. वहाँ पे जो सोशल सेटअप है वो यहाँ से बेहतर है
1: जी.
0: तो ये मैं कहना चाहूंगी
1: जी. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. हम यहाँ पे सोशलाइज कम करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब व्यस्त रहते हैं.
0: हाँ जी.
1: तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि मेंटल वेलबींग के लिए.
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल. आपने देखा
1: अगला होगा. सवाल मेरा यही है आपसे.
0: अच्छा जी.
1: आपने
0: अच्छा जी.
1: पिछली बार जब शो पे आए थे आप,
0: हाँ जी,
1: तो आपने होम्योपैथी के साथ साथ आपने मेंटल वेलबींग की बात भी करी थी. तो अगला सवाल यही है, जैसे अभी आपने बोला चैलेंजेस में एक के हम सोशलाइज कम कर पाते हैं, तो वो आप जो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें क्या बताना चाहेंगे हमें?
0: मेंटल हेल्थ बहुत क्रूशल पार्ट है जी अपनी वेलबींग का, बहुत क्रूशल. आपको कितने साल हो गए मैक्स जी यहाँ पे?
1: 11 साल हो गए.
0: आपने क्या डिफरेंस देखा यहाँ की मेंटल हेल्थ और इंडिया की मेंटल हेल्थ में?
1: मेन डिफरेंस तो ये है कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं, तो हम यहाँ पे ये सोच लेके आते हैं कि हम कुछ करने आए हैं, कुछ बनने आए हैं. तो हम कभी, काफी लोग मेरे जैसे, उसकी दौड़ में हम हमेशा सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं. हम सोचते हैं कि हम जैसे कोई एक्टिविटी कर लें, कोई स्पोर्ट्स खेल लें या सोशलाइज कर लें, हमें लगता है कि नहीं यार, हम यहाँ वो करने थोड़ी आए हैं,
0: हम तो पैसा, तो हम
1: पैसा कमाने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, हम उसी में घुसे हुए हैं, दलदल में.
0: हाँ जी. तो आप इन पूरे सालों में आपने ये बात तो देखी होगी कि यहाँ पे डिमेंशिया के केसेस, डिप्रेशन के केसेस, एंग्जाइटी के केसेस, सुसाइडल टेंडेंसी के केसेस भारत से बहुत ज्यादा है
1: जी, बहुत ज्यादा.
0: जो मेरे एक्सपीरियंस या केस टेकिंग से आता है,

0: यहाँ पे क्यों है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोग सोशलाइज नहीं करते. मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं दोनों कम्युनिटीज, कीवी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ. कीवी कम्युनिटी का सोशलाइज ना करने का रीजन है क्योंकि इनका कल्चरल सेटअप ही ऐसे हुआ हुआ है. पहली बात, यहाँ पे सिर्फ 50 लाख आबादी है, उसमें भी 6 महीने के बच्चे को ये दूसरे कमरे में अकेला सोने के लिए डाल देते हैं. तो क्या वो बच्चा अपनी माँ से सारी उम्र इमोशनली कनेक्टेड रहता है? ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट आई स्टैंड बाय इट. तो क्या वो बच्चा इमोशनली स्टेबल या इमोशनली कनेक्टेड फील कर पाएगा अपनी माँ से हमेशा के लिए? नहीं. इसलिए जब वो 18 साल का होता है, वो घर छोड़ जाता है
1: जी,
0: वो भूल जाता है, वो सिर्फ क्रिसमस के क्रिसमस आता है, दैट्स इट. ठीक है जी. दूसरा, ये इंडिपेंडेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं. बच्चा खुद खाएगा, बच्चा खुद अपने हाथ साफ करेगा. यहाँ उल्टा इंडिया में हमारी मम्मियाँ हमें 5-5 साल तक अपने हाथों से खिलाती हैं
1: जी.
0: वो चीज़ एक बॉन्ड क्रिएट करती है. यहाँ पे कीवी कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट होने के नाम पे ये बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं
1: जी.
0: तो वो बच्चा जब आइसोलेट होता है, उसको आइसोलेशन की आदत पड़ जाती है. जब वो आइसोलेशन की आदत पड़ जाती है, जब कभी कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंस आती है, तो वो उसकी नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करती है, क्योंकि उसको, उसने कभी सीखा ही नहीं सोशल सर्कल में रहना या अपनी बातें शेयर करना, कभी किसी के कंधे पे अपना सर रख के रोना कभी सीखा ही नहीं, बिकॉज उनको तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर इनफ
1: जी.
0: पर मेंटल वेलबींग के लिए सोशल सर्कल बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरे 2.5 साल का बेटा है, उसको कभी कभी जब मैं टीवी दिखाती हूँ, उसके एक पोएम आती है, उसके इंग्लिश लाइन है, वो मुझे याद नहीं है, बट उसका कहने का मतलब है, आप जितना लोगों में रहोगे उतना खुश रहोगे. तो मैंने ये देखा कि ये मैसेज वो कार्टून सुपर सिंपल करके है वो चैनल का नाम, ये मैसेज वो बच्चों को देना चाहते हैं कि आप शुरू से ही सोशल होना सीखो तो आप खुश रहोगे
1: जी.
0: इंडियन कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ का कारण है क्योंकि उनको डिफरेंट अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि वीजास के हो गए, किसी को प्रॉपर्टी लॉस हो गया, या किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी ने पीछे इंडिया में लोन पे ऑफ करना है
1: जी.
0: क्योंकि वो फोकस सिर्फ उस तरफ कर रहे हैं, उनको सोशल होने का टाइम ही नहीं है
1: जी.
0: 24 घंटे में 18 घंटे तो वो काम कर रहे हैं
1: जी.
0: तो पीछे टाइम बचा क्या
1: जी.
0: तो मेंटल हेल्थ इस वजह से भी इफेक्ट होती है
1: जी.
0: एक मुझे जो लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आजकल के आधुनिक जमाने में लोग ग्राउंडिंग भूल गए हैं. कभी नंगे पैर नहीं चलते हैं हरे घास पे
1: जी.
0: जब आप चलते हो तो सारी नेगेटिव एनर्जी धरती माता संभाल लेती है. और आजकल के जो ये मेंटल हेल्थ कोच हैं, ये इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं. इनको नहीं पता है ये इंडिया भारत में 100 साल से पुरानी है
1: जी.
0: नंगे पैर चलते थे घास पे
1: जी.
0: जब हम गार्डनिंग भी करते हैं, मान लो हम गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन के केमिकल्स में इफेक्ट होता है उसका. जब हम मिट्टी को टच करते हैं, हमारे ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. है तो छोटी सी बात
1: जी,
0: पर देख लो कितनी डेप्थ तक आपको इफेक्ट करती है. तो कुदरत से जुड़े रहना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जितना आधुनिक हो गया है, हम रील्स पे स्पेंड करते हैं टाइम, हम फोन पे रहते हैं, स्क्रीन्स पे रहते हैं, आंखें तो खराब होती ही हैं, हमारा मेंटल हेल्थ आइसोलेट तो हम खुद हो गए हैं
1: जी.
0: बाहर जाके खेलते नहीं हैं
1: जी,
0: टाइम नहीं स्पेंड करते हैं उसके साथ, कुदरत के साथ. कुदरत सबसे बड़ी हीलर है जी, धरती माँ सबसे ज्यादा बड़ी हीलर है, वो सब ठीक करती है, पर हम उसके उल्ट चलते हैं
1: जी.
0: मुझे ये भी लगता है.
1: देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे. जब आपने आंखों की बात करी, मैं अपना चश्मा देख रहा था, तो एक जागरूकता मिल रही है आपसे बात करके ना. ऐसे लग रहा है कि ओके, हम एक दलदल में फंसे हुए हैं सारे.
0: हाँ,
1: तो यही हमारा मकसद है आज का, कि लोग आपको सुने और एक बार रुकें, थोड़ा अपने आप के बारे में सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. यू नो, आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर हमें कुछ रुक के सोचने की जरूरत है, या अपनी दिशा बदलने की जरूरत है. तो ऐसे ही सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं. कुछ जानना चाहते हैं हम, और हमारे दर्शक

0: आपके बारे में।
1: हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं मैक्स जी?
0: क्या हॉबीज हैं? गार्डनिंग करते हैं, क्या करते हैं आप अपने फ्री टाइम में?
1: हाँ जी मैक्स जी, मुझे अपने फ्री टाइम में एक तो वॉक करना बहुत पसंद है
0: जी। क्या
1: न्यूजीलैंड सबसे खूबसूरत कंट्री है
0: जी।
1: कीवीज लोग कहते हैं न्यूजीलैंड इज गॉड्स ओन कंट्री, भगवान की खुद की कंट्री है।
0: क्या बात है।
1: सबसे पहले हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमें कुदरत ने मौका दिया। मैं वॉक करती हूँ और मुझे हाइकिंग का बहुत पसंद है जी। आज तक मैंने यहाँ पे एक टोंगरीरो ग्रेट वॉक है वो की है, वो 19 किलोमीटर की है। एक वाइक्रोमोना ग्रेट वॉक है, वो 4 दिन का हाइकिंग है, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया है। और जो मेरा लास्ट बर्थडे था उस पे हमने एज ए फैमिली पाइका करी की एस्कार्पमेंट ट्रैक पे वॉक करी थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। उसके अलावा जी मैं जिम करती हूँ, और जिम में मैं स्ट्रिक्टली कार्डियो नहीं करती हूँ, कार्डियो नहीं पसंद है मुझे, वेट लिफ्टिंग पसंद है। और एज ए होम्योपैथ और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल भी मैं हर स्त्री को ये बोलना चाहूँगी कि वेट लिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है आपके हार्मोन बैलेंस के लिए। पहली बात, आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। दूसरी बात, आपके मसल्स तो बढ़ते ही हैं जब आप वेट उठाते हो, आपके बोन स्ट्रेंथ बढ़ता है। आपने देखा होगा कि भारतीय महिलाओं में जो नहीं एक्सरसाइज करती हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनको फ्रैक्चर्स, बड़ी उम्र में जाके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज या डंबल उठा के एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। तीसरा, जब आप एक्स्ट्रा फैट लूज करते हो, एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन टू मच ऑफ ईस्ट्रोजन, बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन बॉडी में होने का भी नुकसान है
0: जी।
1: कैंसर भी एक ईस्ट्रोजन से ही होता है
0: जी,
1: तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन डिटॉक्सिफाई होता है, ठीक है जी। आपने एक पब्लिक फिगर देखी होगी मंदिरा बेदी
0: जी, बिल्कुल।
1: वो कम से कम, मैं छोटी थी जब मैं उसका शांति देखती थी, ठीक है जी, अब मैं 38 इयर्स की हो गई हूँ, वो अब भी 16 की ही लगती है
0: जी, बिल्कुल
1: लगती है।
0: हाँ जी।
1: उन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा यही राज है। किसी ने उनसे पूछा था कि भी आप इतनी यंग दिखती हैं, इसका क्या राज है, तो उन्होंने बोला था कि एक्सरसाइज करती हूँ मैं 5 दिन 7 दिनों में से, और मेरा यही राज है, मुझे कभी मीनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आए हैं उनको, और वो फिट हैं, आपको देखने से पता लग जाएगा
0: जी।
1: तो मैं एक्सरसाइज को बहुत प्रमोट करती हूँ जी, बहुत प्रमोट करती हूँ। कम से कम अगर आप जिम नहीं जाते हो, दैट्स फाइन जी, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी आप एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक कीजिए हफ्ते के 5 दिन
0: जी,
1: बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है
0: जी। और या फिर कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं?
1: हाँ, स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया जी,
0: जी कुछ भी
1: स्पोर्ट्स, कुछ भी स्पोर्ट्स आपको एक्सरसाइज तो देता है और आपकी लाइफ को पर्पस भी देता है
0: जी, 100%।
1: आपकी लाइफ में कोई बैड फेस चल रहा है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप शो अप करते हो
0: जी,
1: तो आप उस बैड फेस से बहुत जल्दी उबर जाते हो
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये आपकी लाइफ को एक पथ भी देता है, एक रास्ता भी देता है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूँ, जैसे जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
1: हाँ जी।
0: मैं नहीं बोलता क्रिकेट खेलो, मैं खेलता हूँ, मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कुछ भी खेलो।
1: हाँ जी, कुछ भी,
0: क्योंकि हमें कोई भी स्पोर्ट फिट तो रखता ही है, जैसे आपने बोला मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लेकिन साथ साथ में जिंदगी के और भी कुछ चीजें सिखाता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट।
1: हाँ जी।
0: प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और गिव अप नहीं करना है, और टीम वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: और इसमें एक और चीज मैं ऐड अप करना चाहूंगी, स्पोर्ट्स आपको सिखाता है हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, और उससे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना
0: जी,
1: है
0: जी। और ये चीजें आप जिंदगी में कहीं पे भी अप्लाई
1: कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो मैं एज अ टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा, नहीं। मेरे हस्बैंड का और मेरा ये सपना है कि अंगद
0: जी
1: कोई भी स्पोर्ट्स खेले, कोई भी स्पोर्ट्स अपनी चॉइस की
0: जी,
1: चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे रग्बी भी हो,

0: जी
1: हाँ, पर एक स्पोर्ट्स खेले वो, खेले, चाहे सॉकर
0: जी बिल्कुल,
1: पढ़ाई में वो कर लेगा
0: जी जी,
1: उसमें मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो कर लेगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा वो जिंदगी में, पर हाँ वो एक स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करे
0: जी। बहुत अच्छी बात है, और हम दर्शकों को भी यही बोलेंगे कि अपने बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाएं।
1: हाँ जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो अभी फिर से हम, मैं साथ साथ में टाइम देख रहा हूँ, हमारे पास टाइम रह गया है कम, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना है मुझे।
1: हाँ जी,
0: आपको इजाजत देने से पहले, अगेन हम यही चाहते हैं कि आपसे बातचीत चलती रहे, आपसे सीखने को मिलता रहे।
1: हाँ जी।
0: और ये सवाल मैं पूछूंगा कि आपका कम्युनिटी में जो क्या रोल है।
1: कम्युनिटी में, हाँ जी, कम्युनिटी में एक तो जैसे मैं थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटीज करती हूँ
0: जी,
1: अगर हम कंपेयर करें बाकी भारतीय
0: जी
1: विमेन के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी को तो प्रेरणा दे रही होंगी
0: जी। क्या बात,
1: और मैं देना भी चाहती हूँ,
0: बहुत बड़ी बात,
1: एक्सरसाइज के लिए या अपने चैलेंजेस को फेस करके उनसे उभरने के लिए
0: जी,
1: किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए, ना कि सिर्फ बैंक में डॉलर्स रखने के लिए, इससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट
0: जी,
1: आपका नाम ही आपका ब्रांड हो, आपकी पहचान हो
0: जी।
1: मैं जितना विमेन के लिए कर सकती हूँ मैं करती हूँ, बाकी मैं कम्युनिटी में फ्री होम्योपैथिक कैंप्स लगाती हूँ
0: जी,
1: ये अभी तक सिर्फ गुरुद्वारा साहिब में लगा है। मैं हर तरह की इवेंट में जाने अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि अभी गुलाब सिद्धू का एक शो हुआ था, वहाँ हमने स्पॉन्सर किया था
0: जी।
1: आने वाले शोज पे भी मैं कोशिश करूंगी, जब कोई हमारे घर के पास मिल्सन में एक मंदिर है
0: जी,
1: वहां पे भी मैं कभी कभी चली जाती हूँ
0: जी।
1: मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं सिख हूँ, गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, ऐसी सोच मेरी नहीं है। इंसान तो सारे एक हैं, भगवान के बनाए हैं
0: जी।
1: मेरी कई क्लाइंट्स, आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, मेरी कई क्लाइंट्स पाकिस्तान से भी हैं।
0: क्या बात है,
1: और वो पंजाबी बोलती हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी,
0: हमारी क्रिकेट टीम में भी हमारे एक इब्राहिम भाई हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो, हमें तो बहुत प्यार है जी।
1: हाँ जी,
0: हमारा तो बहुत प्यार है पाकिस्तान से,
1: और उनकी पंजाबी भी हमारे पंजाब, इंडिया वाले पंजाब से मेल खाती है, मेरा मन खुश हो जाता है, बाय गॉड
0: जी।
1: और कई क्लाइंट्स हैं मेरी, वो माओरी हैं
0: जी,
1: ठीक है जी, वो अपनी शूज बाहर उतार के आती हैं, और मेरे एक मेरे केबिन में एक माओरी गिफ्ट है, उनको पता है, सब बाकियों को नहीं पता है, वो फेदर्स ऑफ नॉलेज है, उनको पता है उसकी इम्पोर्टेंस, वो है। फिर मेरी कुछ क्लाइंट्स आइलैंडर्स हैं, मैं उनसे भी उनका कल्चर सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं मैं हर कम्युनिटी को इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो सर्विसेज हैं वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हों
0: जी।
1: मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी, अगर आपके पास, अगर आप अपने किसी कम्युनिटी गैदरिंग में फ्री होम्योपैथिक कैंप लगाना चाहते हो, आप मुझे संपर्क करिए, मेरा फोन नंबर है 02041071167। मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपकी मदद कर सकूं और कम्युनिटी को मैं कुछ दे पाऊं, मेरा, क्योंकि इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है
0: जी।
1: अब मेरी बारी है इस कंट्री के लिए कुछ करने की, और मेरे पास स्किल्स हैं तो क्यों नहीं, क्यों नहीं
0: जी।
1: अगर हम सिर्फ अपने से ऊपर सोचना शुरू करें तो मुझे लगता है वो हायर पर्पस ऑफ लाइफ है
0: जी।
1: हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं जी रहे हैं, हम पर्पस के लिए जी रहे हैं, और वो चीज मेरी खुद की जिंदगी को पर्पस देता है, एक डायरेक्शन देता है, मीनिंग देता है
0: जी।
1: मुझे अपने होने पे गर्व होता है कि मैं सिर्फ खाना खाने तो नहीं आई हूँ इस दुनिया पे
0: जी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और इसी को हम देखते हुए ये भी देख रहे हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ से, यहाँ पे एक बार फिर से आए हैं
1: जी,
0: और आप अपना कोई मोटो नहीं लेके आए अपने लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए या कुछ भी, आपने उसकी कोई बात नहीं करी, आपने कम्युनिटी की बात करी है, और बहुत गर्व होता है हमें भी हमारी कम्युनिटी के एक इंसान को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते। तो मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें अपनी जिंदगी में।
2: You're listening to NPR, Manawatu People's Radio. Te reo irirangi o na tangata o Manawatu. It's 6 o'clock. Community notices on NPR.
3: Looking for a friendly way to spend your Tuesday mornings? At City Mission's Mind Matters, you can socialise and engage with a range of games and activities while enjoying a cuppa in a warm and welcoming environment.